0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो पियम चुनके रे वेर क्वारो
0: पियम चुनके रे वेर क्वारो
1: बिमारा मैं पाचू
0: बिमारा मैं पाचू
2: यू आर लंग यू बी डू टेल आ नो का कौन पे ने
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: मार मैं पाचो
1: इटीनो और रेडियो पियम चुनकेरे वेर क्वारो
0: पियम चुनकेरे वेर क्वारो
1: बिमार मैं पाचो
0: बिमार मैं पाचो
2: इवान लंग यू बिरु टेरा आ इलो का
1: इटीनो और रेडियो
3: जेस लेंसी ग्वे अनदर वन.

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो यूम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: Soldiers was the real soldiers, aka Okang boy in town, alongside Mr. Diggy, Diggy, Diggy, Mr. Dirwal there.